0: বিরোধে মুরা পশ্চিম দেশে দে কান্তে গৌমি গেই রূপ
1: মনে কৌমি গাহকি দিবে হেরো জৌলঙ্গে তা দিবে হে রুকুকে এভেস পায় নহনানে কা বেণমে নহিফে বাই নেগে দিবে হে রুকুকে এমে রুকুকে ফানুম ফেশিগেন ইলোশিম ফেশিগেন গোস বিমোডে ফাবা ফুন নমুতক দানে দিবে হে রুকু গন হনানে কমমেস বেণমে নহিফে এভেস বাই গে এ মানে হামবনা রুকুম ইসরাফ বেগেন এল্লালন জে এভেস পায় নহনানে এই রুকাবহে এমে তাফাত এক্কন্ত বাইকস কস হুন্নান হাম বেনু নুকুরে বেতং হুন্নদ একম রুকু গ এগতক নহুন্নান এবে সিচিং গে
0: নাও কি হাকে আ নাও কি হাকে
1: যাও কি হাকে আর মির তা
0: বাবা
1: কেনে হাদান কে ই রিহা কুরা জসন্ত
0: হুহা
1: হুহা কে হুহা আর মির
0: বাবা
1: তেন্দু হুন কাচ্চে রিহা কুরা জসাঙ্গে আর মির আনে রিহা কুরা জসাং কালি আদিয়া বতে এমসেকে আদিয়া গেনস্তেম বুঞ্জেকে সাদিন ওই নিমেঙ্গে আদিয়া বাইন এমসেকে মি ফার্মে অতি বাহকে ও বাহকে বাহকে বাহকে গ মি বাগতে কি মি হার প্রোগ্রাম গ বারবা হুরি হা কোদেম মেগে মি গেনস্তেনি বাহকেঙ্গে মি হাম বাহক লিয়ামুন লিয়ামুন মি দানি তেং মি বাহক মি হার এবাই তংকলে দিকুয়েফা জাউলস মি জহেনি মি বাহকে জুমলাং ইতুর কোলাঙ্গে ಮಿಹಾರು ವಾಹಕ ಗೊಸ್ಸೆಂಗಿ ಸಾಬದತ್ತ ಕಿಯಾಲ್ ದೇಣಂಗೆ ಲಬ್ಬ ಮೇ ಕೊಡ ಕೊಡ ಯಣ ಮಮ್ಮೆ ಆ ಬಪ್ಪ ಯಣಾದಕ್ಕೆ ವರಲ್ ಲೋಬಿವೆ ಎನ್ನಮೆ ಸ್ಯಣ ಕುದಿ ಕುದಿ ಕಂತತ್ತೋ ಗರುಳಿ ಅಣ್ಣಾತಿ ಯಣಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ವರದ್ದೆರವೆ ಎಕಮ ಯಣಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಬ ಫ್ಯಾನ್ ನಸೇಹತ್ ಹೋಪಿವೆ. ಮೀಹುಂದೇ ನಸೇಹತ್ತುಗ ಹಿಫಾಗೆ ರಗಳಂ ಉಳೆ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರಂ ವಾಣಕಮುಗ ಮಮ್ಮ ನಸೇಹತ್ ತೆರೆವಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಬ ರೀತಿಕೋ ಜುಮ್ಲೈ ಗೊತ್ತ ಕಿಯಾಲಂದೋ ಮಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಇತುರ್ಕೊಲ್ಲ. ತೆಮ್ಮೆ ಜಾವಲ್ ತಿಬ್ಬುಣಿ ಜುಮ್ಲ ಮವರ್ ರೀತಿಕೋ ಕಿಯಾಲ್ ದೇಬ ತಿಬ್ಬುಣಿ ವಾಹಕ ಜುಮ್ಲೈ ಗೊತ್ತ ಕಿಯಾಲ್ ದೇ
0: ಹೇಗೆ
1: ಫಹುನ್ ಯನಾವೆಸ್ ಹೆಂಕುದಿನ್ನ ಎನ ಸೇಹರ್ದಿಂದ ಸೌ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಮೇಮ್ಯೋತಿ ಆದೇ ಫೈಂಗೆ ಕುಡರ್ ಕೊಳಗೆ ತೆರೆಗ ದತ್ತಮೆ ಗುರುತು ನಗಾಣ ಎಹಮ್ಮ ಅಡುಹಾಲಂಗ್ ಎಣ್ಣಚ್ಚೆಂಗೆ ವಕ್ಕಿವೆಲ್ಲಾಣ ಸೌಲ್ಲಾ ವಕ್ಕಿವೆಲ್ಲಾ ಫದೆನ್ ದತ್ತಮೆ ಕುರಿಯದ್ದಾಣಿ ಮೆದ್ಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಗುರುವತ್ತಾಗೆ ಹೆಕಮ್ ಗುರುವತ್ತ ದಿಂ ಕುರಿ ತಿಕ್ಕುದಿನ್ನ ಹದಿಯ ಗೆಣಸ್ ತೀಫ ಗುರುವತ್ತಾಗ ಬದಲ್ಕೊಲ್ಲ.

0: मिनी बंदूक के खास प्रोग्राम तो के तेरे
1: दिव्य राज्य के मिनिवंग कब की तारीख
2: इंग्रेसिंग ऐतिहासिक हिमायत वे राज्य मिनिवंग कल्पनों में तारीखी एग्रीमेंट का सोय करें बुनी नवार से ते का फर्स्ट रस फर्स्ट पर नाहरोगे जुलाई माह के सब 20
0: दिव्य हिंग मिनिवंग कंग मान करा गए

0: हंगार
1: अंगार दो मिंद्र कोरी इकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदम बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनी दिवे राज्य चाडू
3: अधियन की न वेफति होरी
4: मेरी वर बड़ा हास वे
3: अनेक कठिस टू क्या रवि मता मन्ना हाँ द देरा वेफाये
4: आहने के वर गया कुछ आरे न माला में कुरने
3: हास नो एब स्पेल द टी प्रोग्राम अडू ही मती कहला होरी हाँ कंका मंगहल्लो हो दने गे ना
4: स्पेल द टी ये
3: आं मिकाल कंकं दिमावे मा कांतक कुरे विदान गोयतं ए प्रोग्राम उंगे गेने
4: स्पिल द टी हमे कणी दिवे राज्य गाडो
5: आदित दो होगे हवेरो हतर गड़ फनड़ागा
6: रिपीट बुद दो होगे हवेरो हतर गड़ फनड़ागा
5: आदि बोडास्पति दो होगे हवेरो फहद जहाड़ो
3: एंखा सतरस्तेका सालिस नुए किलो हर्ट्स मीडियम वेव अदे अड्डिया नुए मेगा हर्ट्स एफएम बैंड हमें कने दिवही राज्य ग्याडूं इंतिजार कोल्लावा
7: स्पिल द टी

0: थुरास थुरास
1: थुरास ए तारिका अहर मेंगे बहा सगाफता आध कादाय के तेरे का आध बावर कंते तके हुरे अडवा हालम बेनुं ता
2: हाँ वारा पेनो
3: दिविराजे गड़ ठ्यून कोला अंगार दो के हावीर फाहिज जहर बुरास दो के हावीर हाथरगोड़ फनराग अदि आदित दो के हावीर फाहिज जहर हमें कने दिविराजे के आड़ों

0: दिवही राज्य मिनिमम गांव में गुतगा तुमा दिवही बस अदा करा दाओ
1: दिवही बस मशंग हादरीचे
2: मिनिवंग का उमका ख्याल फार करूं के मिनिवंग का उमके मुहिम मुका
0: अधिवेश अधिवेश
2: एंगा सत्र से तक 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
0: दिवे ही राज्य का
2: इंतजार कर लो फा
0: मिनिवंग उफा

0: दिवही राज्य मिनिमम गांव में गुतगा तुमा दिवही बस अदा करा दाओ
1: दिवही बस मशन हादरी चे
2: मिनिवंग का उम्म का ख्याल फार करूं के मिनिवंग का मुके मुहिम मुका
0: अधिवेश अधिवेश
2: एंगा सत्र से तक 49 किलोहर्ट्स मीडियम वेव 89 मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
0: दिवेहि राज्य का
2: इंतजार कर लवा
0: मिनिवंग उफा
3: එංහා සතරසේක සාලිස් නුවේ කිලෝහර්ට්ස් මීඩියම් වේව් අඩිහ නුවේ මෙගාහර්ට්ස් FM බෑන්ඩ්
2: දිවෙහි රාජ්‍යයේ අඩුව

0: हंगार
1: अंगार दो मिंदुन कोरी इकार गड़ फना रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मिंदमो पार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य के आड़ू
3: कोमे कुछ जब इस अशार हरो फुरेंदेंग गानों ने गोतुं बेलेवेनी कुड़ कुछ जगे गोतुगा मीं कोमे उमरे के कुछ जकी वेस लोएब्बा अलालुमा रक्का तेरिकं हमा में लिबंजे कुछ जे मी कुछ जावे गिंदानी तिमा बालिवी में अलालाने मी हाया नेंगु नीमा जवाब देने मी हाया नु रक्का तकुं हिमा एक को देने मी हाया वीमा मी कुदी नमिया दु लोबी देमा अलालमा अधि समाल कं देमा एही हो देवुमा साध बारे गुड़ुवा
4: එංහා 4140 kHz medium wave 890 MHz FM band
2: දිවහිරාජ්‍යයේ අඩෝ